ये सतीन उतर कसो मां बेटा के नथा के ब्रोना सर जीता अब लंबा मरी जे रिया सो अगुति रात्र अगुति दे गोसे समा गंगवा जंत को सी एंड साइड मु तनो दर बगे बहुत अब तो सबराइनी आवा मु नथिंग लाले एगले लाती के क्वायरी क्वायरी इन सो द डीवाई ट्रेडिशन आया गिरो ले दगो जांग बेसा इन दगो जांग रिक्वेस्ट जो दिजे दर का बेसा बना तो हम का बेसा है लगे नंगर आयो हम के चगे ने आगो यो ने ये दे जी दनगर ले अनवे गुनो की नबई इन म्यान राजी जी के गुंगा जो मैं दियो नो फा आयो नो द